0: मुझे अल्लाह पे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इंशाल्लाह मेरा भाई वापस आएगा।
1: Currently, more people than ever are on the move worldwide in search of a better life.
2: उन्हें बस यह सोचा कि मेरे घर के हालात ठीक हो जाए, यह सोचता है। तो मैं उन्हें क्या विषय कि मैं घर के हालात ठीक करने उनके घर रह के भी हो सकते हैं, तो पुठे रास्ते ना जा। तो नहीं सी मनता किसी की गल।
1: Find out about Rubina's story. Info Migrants. Reliable news for migrants, wherever they may be.

0: A different point of view. Find it here. Reporter, every weekend on DW.
1: उसकी ये बात अभी भी याद है कि उसने बोला था कि यार मेरी अम्मी को बोलना कि वो आपका बेटा मर गया है, अब उसका आप इंतजार ना कीजिएगा और मुझे यहीं पे छोड़ दो, आप जाओ मेरे लिए दुआ करो.
0: Currently, more people than ever are on the move worldwide in search of a better life.
1: तो जब ये वीडियोस मैंने देखी थी, मैं खुद रोने लग गया था कि यार ये क्या है. फिर मैं एक दफा फिर से मेरा जुनून ताजा हुआ, फिर से मैंने इस चीज को और ज्यादा मजबूत तरीके से एक्सपोज करना शुरू किया.
0: Find out about Ali's story. Info Migrants, reliable news for migrants, wherever they may be.